सच है भी सच, नानक हो सी भी सच, सच सच न हो वही जे सुची लकवार, चिपे चिप न हो वही जे लाए राव लिवथार, पुकिया पुकन उतरी जे पाना पुरिया पार, सहस अनपालक होए ता इक न चले नाल, खेव सचियार होए खेव कूड़े टूटे पाल, हुकम रजाई चरना

साथ विचारे गावंथु नो जति सती संतोखी गावंथु नो वीर करारे गावंथु नो पंडित परन रखी सुर जुग जुग वेद नाले गावंथु नो मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पियाले गावंथु नो रतनु पाए तेरे अठ सठी रतना

ज्योतिषी वडियाई ज्योतिष भावे सोई करसी फिर हुक्म न करन चाई सोपत सहो सहापत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई

कर जुग अगे तर तरिया, मेरे मातो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सुखे खसत हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी धरिया, सिर सिर रिचक संभाई ठाकुर, काहे मन बो करिया, उदय उद अवै से खोसा, तुस बच्चे बचरे छरिया, थिं कवन कलावे कवन चुकावे, मन में सिमरन करिया, सब निदान दस असत सिदान,

चौथा सो पुरख एकोंकार सतगुर परसा सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपार सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहार सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा हर त्यावो संतो जी सब दुख सारनहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी किया नानक चंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक बेकारे जी सब तेरी छोज विडाना तू आपे ताता आपे पुकता जी हो तुत बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे किया कुन आकव काना जो सेवे तुझ जी जन नानक थिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी सहजन जुग मैं सुखवासी से मुगत

पारे बोसे मृत शास्त्र जी कर क्रिया कत कर्म करंता से भग पले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आर पुरख अपरंपर कता जी तुद जेवद अव

आसा महल चौथा तू करता सचिया मैदा साई जो तू पावे सोई थिसी जो तू दे सोई हो पाई रहा सब तेरी तू सब नीति आया जिसनो कृपा करे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुख गवाया तू तो आप विचोरिया आप मिला।

मन एक न चेथ समूर मना हर बिसरत तेरी कुन कलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं परिया मूर्ख मुक्त जन्म पाया प्रणवत नानक थिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा बाए परापत मनुक ते होरिया

जनन प्रेता जात रंग माया के रहा, जप तप संजम धर्म नक माया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहूं नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा, जप तप

मोर चानज करते करिया सब बैरन को अज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा थोए भजन की रहे प्यासा तुमे चा कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सु तुम ते पाओ सेवक सीख हमारे थरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मलन काल का त्रसन वरिया हो जो सदा हमारे पच्चा श्री अस जूझ जू करियो रच्चा राख लियो मोय राख नहारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंधु तन के अंता तुम हो पूरी चतुर तस्कंता काल पाए ब्रह्मा पप तारा काल पाए शिव जू अवतारा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन का

किया, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीड़ पहचानत, चित्ती ते कुंचर असतुल्ला, सब पर कृपा दृष्ट कर फुल्ला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए सतन के सुखी, एक एक के पिए पहचान है, कट कट के पट पट की जान है, जब उत्कर्क

दुष्ट अरिष्ट तिरे तत्काल कृपा दृष्टन जाय निहारे हो ठाके थपथ नकमो हर हो वृद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छवे सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताए उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट

कृपा करी हम फक जग माता ग्रंथ करा पूरन सब राता खिल पिक सकल देखो हता दुष्ट दोकियन को चेखता श्री अस तुझ जब पाए त्याला पूरन करा ग्रंथ तत्कला मन बंशन फल पावे सोई दुख न तिसे भी आपत कोई हरिल सुने कुंग जो याए सरस न पावई सुने मोर चित लाए चुतरत आवई दुख तरत बोन खतना तिन नार केरा है हो जो या के एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबत सस्त्र सहस बनिचे अर्द

सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सहती मन वजिया वरदाया राग रतन परवार परिया शब्द का वनी आया।